0: Frequency Pilze zum Liegen. सोलह दशमलव नौ चार और 25.08 मीटर बैंड.
1: Čia radio stotis iš Kauno.